किरणे हिमालबाट खोलो झर बेसी चलालाला नदेखे माया के हो कसो देखे माया झलमल हो तोरी कतेला ठोरी करेला तिम्रो हाम्रो

का एक क्षेमावती दोलखा क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका दुई कार्यक्रम स्थल भीम माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका दुई दोलखा क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका तीन र छ कार्यक्रम स्थल कालिन्चोक माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका तीन चरीकोट दोलखा क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका चार कार्यक्रम स्थल सर्वमाध्यमिक विद्यालय टहले मन्दिर भीमेश्वर नगरपालिका चार टहले दोलखा क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका पाँच कार्यक्रम स्थल महेन्द्रदय माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका पाँच माटी दोलखा क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका पाँच कार्यक्रम स्थल नयाँ पुल बजार भीमेश्वर नगरपालिका पाँच नयाँ पुल दोलखा क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका पाँच कार्यक्रम स्थल बुढा भीमसेन माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका पाँच किराती छाप दोलखा क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका सात कार्यक्रम स्थल कुटीडाँडा माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका साथ मकैबारी दोलखा क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका साथ कार्यक्रम स्थल कुप्री प्राथमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका साथ कुप्री दोलखा क्षेत्र भीमेश्वर नगरपालिका आठ र नौ कार्यक्रम स्थल देवी माध्यमिक विद्यालय भीमेश्वर नगरपालिका आठ बोस दोलखा 2083 साल असोज 10 गते शनिबार एकाई नम्बर तीन क्षेत्र काठमाडौँ कार्यक्रम स्थल न्यू त्रिशक्ति पार्टी प्यालेस काठमाडौँ महानगरपालिका 32 पेप्सिकोला काठमाडौँ 2083 साल असोज 13 गते मंगलबार क्षेत्र मुख्य निर्णय प्रमाणित कार्यक्रम स्थल संस्थाको मुख्य कार्यालय भीमेश्वर नगरपालिका छ चरीकोट दोलखा केही दुविधा भएमा संस्थाको फोन नम्बर 049-421-397 421-943 421-549 421-303 मा फोन गरी जानकारी लिन सक्नुहुनेछ। ठाकुर प्रसाद पाठक सचिव मिलीजुली कालिन्चोक बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेड भीमेश्वर नगरपालिका छ चरीकोट दोलखा।